शाम भैस्तंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको साथ सुमावे रे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए ले प्राचत जाहे नाए ले प्राचत जाहे नानक तो मखंत्र पाहे जुज मह जोर शलि चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जाद गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल मह बेद अथर्पण हुआ नाउक दाई अलोह भया नील बस्तर कपड़े पैरे तुर्क पठाने अमल किया चारे में

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो स्मराओ। श्री हर राय। श्री हर कृष्ण।

अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब आते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर संदीदार

0: बस चित है बस है।
1: हुणे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो सबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण कर रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 6 बज रहे ने, आहुन सुन रहे हां हिंदी च समाचार।
2: इस समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए

0: न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापानी एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: पुस्तका रहत कमरा आत्मा रहत शरीर दे समान है।
1: ईसी ज्ञान अमृत आओ सर्वण कर दिया भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

0: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो एसी 32 संगीत दा प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6:30 हो रहे ने। पेश है जी आज दा खेतीबाड़ी प्रोग्राम
1: खेतीबाड़ी।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

0: विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात दे केवड़िया विच 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रदान करेंगे। भारत न्यूजीलैंड आजाद व्यापार समझौते नू अंतिम रूप समझौता इस साल 20 अक्टूबर नू होवेगा लागू। भारत अते कैनेडा विच एक व्यापक आर्थिक पाई वाली समझौते दी गलबात नू तेज करन वास्ते सहमत होए ने। रक्षा मंत्रालय वलों T-72 अते T-90 टैंका दी सहायक पावर यूनिटा दी खरीद वास्ते 586 करोड़ रुपए दे करारनामे ते दस्तखत। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब दे वसनीकां नूं नशा मुक्त पंजाब यात्रा नाल जोड़न अते सूबे नूं नशा मुक्त बनाउण दे लई अपना योगदान पाउण दा सद्दा दित्ता है। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने भरोसा दिवाया 1013 लैक्चरारा दी भर्ती विच पट्टी दर्ज जातां लई बनदा राखवां हिस्सा हर साल विच यकीनी बनाया जाएगा। सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह वल्लों खुराक कारोबारियां नूं सफाई अते सुरक्षा मापदंडा दी सख्ती दे नाल पालना करन दे निर्देश। पंजाब विच मर्दमशुमारी 2027 अधीन आबादी गणना दा दूसरा गेड 16 नवंबर तो अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगा। महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब खेड यूनिवर्सिटी पटियाला वल्लों बुजुर्गां दी सेहतमंद जीवन जांच नूं समर्पित 10 रोजा विशेष कैंप दा आगाज। भारत दी राष्ट्रीय शाहरा अथॉरिटी ने तेज अते रफ्तार अते नियंत्रित पहुंच वाले राष्ट्रीय शाहराहां नूं नवे दिशा निर्देश जारी। इस अन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 7:02 होए ने। हुन पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर। प्रोग्राम लेके हाजिर ने रीमा गुगलानी।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते वेव ऐप ते तुसी मेनू ट्यून कर लिया, यानी कि सोनी सवेर लेके हाजिर हो चुकी है मैं तुहाडी आरजी रीमा। गणेश चतुर्थी तो बाद ना रेगुलर रौनक शुरू हो जाती है बाजारां दे विच, हट्टियां पट्टियां दे उपर भी, और देखो साढ़े ते जलंधर दे विच सोडल दा मेला भी लगता है। सो बाजारां दे विच इन्नी ज्यादा रौनक है, त्योहार जड़े है वो आने शुरू हो गए है, मौसम दे विच हल्का हल्का बदलाव है, दिने बहुत ज्यादा गर्मी है पर शाम नू हल्की हल्की ठंडक जड़ी एहसास करवाना शुरू कर दिंदी है। होय नी अज कि सरहदां च भी पूरी गर्मी है, हाले असीं यही सोच रहे हैं, पर कोई गल नहीं, हौली हौली मौसम दा मिजाज बदलेगा तो यकदम ठंड शुरू हो जानी है, पता भी नहीं लगना। पर बहुत सारे लोगों ने एक बारी अपने जिहड़े सर्दियां दे कपड़े ने उन्होंने धुप लवा लेनी है जिदा जिदा टाइम लग्या, पर ना दे नाल असीं अपने ज़हन नू भी धुप लवानी है, इहनू भी दसना है भी साडे कोल किन्नियां ही गल्लां ने, सारियां गल्लां दी पोटली बन के मैं आ चुकी हाँ। प्रोग्राम की शुरुआत कर दी सोहणे जिहे गाने दे नाल, ते चलो फिर

हर दिन खास है, हर पल खास है, पर 22 सितंबर क्यों खास है? की है अज दे दिन दा इतिहास? सितंबर इक्विनॉक्स दी गल करिए तां उत्तरी गोलार्ध विच 22 या 23 सितंबर नूं दिन ते रात बराबर हुंदे है, जिस दे नाल ऑफिशियली पतझड़ दी शुरुआत हो जाती है। और अज दा दिन यानी कि 22 सितंबर विश्व कार मुक्त दिवस है। दुनिया भर च लोकां नूं निजी गड्डी दी बजाए उन्हां नूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या फिर पैदल चलन नूं कहा जांदा है, इसलिए अज दा दिन मनाया जांदा है। ते माली देश ने 1960 विच फ्रांस तो अज दे दिन यानी 22 सितंबर नूं ही आजादी प्राप्त कीती सी। सो ए सी अज दे दिन दा इतिहास। हुण वधदे आं गाने दे वल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: कुछ भी होवे ना असीं कहने AI यूज कर लो, AI तो आर्टिकल ले लो, AI तो आ पूछ लो, AI तो पूछ लो, बट तुहानू पता है कि AI आउण वाले टाइम दे विच बहुत ज़्यादा शैतानियां कर रहा है। हुण AI ने एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाई है जिहड़ी इंसान भी नहीं समझ पाए। AI इंसानां नाल गल करदी तो तुसीं बहुत देखी है, लेकिन एक एक्सपैरिमेंट च AI आपस च गल्लां करन लगे तो अपनी एक सीक्रेट

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणाखोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
4: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण

0: सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
2: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
3: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
4: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाएगी।
3: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
5: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
3: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर

0: विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jaishankar

0: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश है जी प्रोग्राम महक पंजाब दी। प्रोग्राम महक पंजाब दी सुनन वालियां नूं रुपिंदर दी प्यार भरी नमस्कार। जी हां, पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दी मिठास, साडे गीतां दी सादगी ते साडे सभ्याचार दी रंगीनी नूं अपने आप विच समेट के लैके आउंदा है। ते इही रंग इही टंग हुंदे ने साडे इन्हां गीतां दे वी। असी हर वार तुहाडे रूबरू करदे हां अजिहे ही प्यारे गीत। सो प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हां एक बहुत ही प्यारे जिहे गीत दे नाल, जिसनूं असी दो लच्छियां फिल्म दे विचों चुणिया है।

0: प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: वो केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांझरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांझरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: 250 ग्राम तो काट नहीं मिलेगा।
4: ओए क्यों?
3: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
5: ओ भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
6: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
5: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट, इस विच नो मिनिमम बैलेंस, पर फायदे काफी सारे, एटीएम कम डेबिट कार्ड, मोबाइल ते इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
3: दे भाई, आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
7: लो जी, इस अंतराल तो बाद एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाड़ा प्रोग्राम महक पंजाब दी दे विच। ते प्रोग्राम दे विच हुनो गीत जेड़ा कि असी चुने है तुहाड़े लिए इश्कां दे लिखे इस फिल्म दे विचों। कहिंदे ने ना, प्यार नू शब्दां विच बयान करना मुश्किल हुंदा है, दिल दी गल दिल ही समझदा है, ते संगीत उस एहसास नू आवाज़ लगा देंदा है, जिमें कि इस गीत दे विच।

प्रोग्राम चल रहा जी महक पंजाब दी ते हुन प्रोग्राम दे आखरी गीत वल वधदे आ। कई रिश्ते साडी जिंदगी दे विच अजिही खुशी लैके आउंदे ने जिस दे नाल दिल अपने आप कह उठदा है शुक्रिया। इसे खूबसूरत जज्बे नूं समर्पित अज दी साडी प्रोग्राम दी ये आखरी पेशकश फिल्म सुफणा दे विचों ये गीत बहुत ही खूबसूरत ते बिल्कुल यही सिखाउंदा है कि असी शुक्रगुजार हो जाइए। तो जदों असी शुक्रगुजार हो जाते हैं ना उदों फिर परमात्मा बरकतां दे नाल साडी झोली भर देंदा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात दे केवड़िया विखे इतिहासक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नवे भारतीय कौमांतरी जल हफ्ते 2026 दा करेंगे आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच नशा विरोधी कार्यज बलां नू मुखी नू तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच खेतरी अते आलमी मुद्दियां दे नाल दुवल्ले संबंधां नू मजबूत करन बारे फ्रांस स्लोवाकिया हंगरी अते स्विट्जरलैंड दे विदेश मंत्रियां दे नाल गलबात कीती। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब दे वसनीकां नू नशा मुक्त पंजाब यात्रा दे नाल जुड़न अते समर्थन देन अते सूबे नू नशा मुक्त बनाउन विच योगदान पाउन दा सद्दा दित्ता है। कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने भरोसा दिवाया 1013 लैक्चरारां दी भर्ती विच अनुसूचित जातियां दे लई बनदा राखवां हिस्सा हर साल विच यकीनी बनाया जावेगा।

0: सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वल्लों खुराक कारोबारियां नूं सफाई अते सुरक्षा मापदंडां दी सख्ती दे नाल पालना करन दे निर्देश। पंजाब विच जनगणना 2027 अधीन आबादी गणना दा दूजा गेड 16 नवंबर तों अगले साल 4 जनवरी तक रहेगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वल्लों मुलाजम जथेबंदियां दे नाल मीटिंग, मिड डे मील अते माण पत्ता वर्करां नूं दित्ता भरोसा। भारत दे आबकारी दे कर विभाग ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करदियां 4.5 रुपए दे सामान नाल लदे 4.25 करोड़ रुपए दे सामान दे नाल लदे 152 वाहनां नूं काबू कीता। अते एशियाई खेडां विच अज सोने दे तमगे दे लई भारतीय महिला क्रिकेट टीम दा मुकाबला सवेरे 10:30 बजे श्रीलंका दे नाल होवेगा। इस हुण तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अपनी कहानी अपनी फिल्म दे किरदारां दे नाल ते संगीत दे नाल इस फिल्म दा जिहड़ा नाम सी ओ फिल्म फेयर अवार्ड्स दे उत्ते भी पूरी तरह चढ़ गया सी। मधुमती फिल्म नूं 1959 दे विच 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जिहड़े ओ मिले। उस समय फिल्म फेयर अवार्ड जितना ते इन्ने ज़्यादा जितना एक वड्डा रिकॉर्ड सी। फिल्म में संगीत तो लैके गीतों तक निर्देशन तो लैके कलाकारी तक तकरीबन हर श्रेणी दे विच सम्मान हासिल किया। ये फिल्म बहुत ही यादगार फिल्म हो गई।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है

0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान के खेड मैदान हुण गूंजेगा एशिया का दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात दे केवड़िया विखे इतिहासक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 दा करेंगे आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली विच नशा विरोधी कार्य बलां दे मुखियां दी तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच खेतरी अते आलमी मुद्दों दे नाल दुवल्ले संबंधा नूं मजबूत करन बारे फ्रांस स्लोवाकिया हंगरी अते स्विट्जरलैंड दे विदेश मंत्रियां दे नाल गलबात कीती। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब दे वसनीकां नूं नशा मुक्त पंजाब यात्रा दे नाल जुड़न अते समर्थन देण अते सूबे नूं नशा मुक्त बनाउण विच योगदान पाउण दा सद्दा दित्ता। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने भरोसा दिवाया कि 1013 लेक्चरारां दी भर्ती विच अनुसूचित जातियां लई बनदा राखवां हिस्सा हर साल विच यकीनी बनाया जावेगा। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वल्लों खुराक कारोबारियों नूं सफाई अते सुरक्षा मापदंडां दी सख्ती दे नाल पालना करन दे निर्देश। पंजाब विच जनगणना 2027 अधीन आबादी गणना दा दूसरा गेड 16 नवंबर तों अगले साल 4 जनवरी तक रहेगा जारी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वल्लों मुलाजम जथेबंदियां दे नाल मीटिंग मिड डे मील अते मान पत्ता वर्करां नूं दित्ता भरोसा। खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खडूरिया ने पंजाब दे किसानां नूं पराली ना साड़न दी कीती अपील, कहा पराली इक स्रोत है रेंद खूंद नहीं अते एशियाई

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: tarbharti.gov। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharti.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी लाइव फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनने वाले नु रुपिंदर दे प्यार परी नमस्कार जी आया नु ते बहुत बहुत स्वागत कर दे हां तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच। मैनू पता है तुहानू सारयां नु अपनियां फरमाइशां दे पुगाउण वाले इस प्रोग्राम दा इंतजार रहंदा है ते बिल्कुल हुन बिल्कुल उड़ीक नहीं करनी, तुसी जल्दी दे नाल साडा नंबर मिला के प्रोग्राम दे विच शामिल हो जाणा है। ते लो जी प्रोग्राम दे विच साडी पहली फोन कॉल बिल्कुल बखूबी पहुंच गई है जी। हैलो सत श्री अकाल जी। वाह जी वाह, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
4: बहुत धन्यवाद जी।
3: प्रोग्राम दे पहले कॉलर बन गए हो तुसी है ना।
4: अजी
3: मैं क्या प्रोग्राम दे विच पहले नंबर ते फोन लग गया।
4: आज पहली बार लगा जी पहले नंबर ते गए बहुत बड़ा धन्यवाद।
3: ठीक है जी, ते आज फिर पहले नंबर ते गीत केड़ा सोना जिया लेके आयो।
4: फिर मैं ये सूरज ते गाने दे बोल पारो फूल वरसाओ मेरा महबूब आया है।
3: वाह जी वाह, सूरज फिल्म 1966 वाली है ना। बिल्कुल जी, इस फिल्म दा ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी होना दी आवाज दे विच सुनवा रहे हैं जी तुहानू। कॉल करन दे लई शुक्रिया। लो जी पहली फरमाइश ते ओ वी इन्नी खूबसूरत, ते तुसी भी अपनियां फरमाइशां दे नाल पहुंच सकदे हो 0181-243-173 नंबर मिला के प्रोग्राम दे विच। तुसी भी आ सकते हो ते सुन सकते हो अपनी पसंद दा हिंदी गीत।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए, नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी।
1: लो जी गोरी हंक लाइया, ये खूबसूरत गीत हुणे तुसी सुनिया फिल्म आज का अर्जुन दे विचों। 1990 दी ये फिल्म लता मंगेशकर शबीर कुमार दी आवाज दे विच गाया ये गीत बप्पी लहरी दा संगीतबद्ध कीता होया सी। ते बिल्कुल जिवें ही गीत चलदा ना अमिताभ बच्चन ते जया प्रदा हुणी हसदे गाउंदे मुस्कुराउंदे इस गीत दे विच जिहड़े नजर आउंदे ने गल्लां करदे नजर आउंदे ने गीतां दे जरिए ओह बखूबी फिर तो दी साडे ज़हन दे विच तरोताज़ा हो जांदा है। खैर इन्हां गीतां दे विच होर ताजगी ते इन्हां गीतां नूं अलग अलग जिहड़ा लब लब के लियांदे ने साडे सरोते, इस करके ये जिहड़ा प्रोग्राम लाइव लाइव फोन इन दा हुंदा ना खास हो जांदा है। 0181 नंबर ते साडे नाल अगले कौन जुड़ रहे ने आओ जानदे आ। हेलो
2: हाँ जी नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी,
2: असि तहसील अबोहर थानेकड़ा कसर तबलंगर सिंह बोल रहा जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
2: थैंक यू मैम।
1: ते फिर अबोहर दे मौसम दे हाल चाल किवें दे जी? मैं क्या अबोहर दे मौसम दे हाल चाल किवें दे ने
2: जी? मौसम गर्मी है मैम,
1: गर्मी हुई पई है।
2: हाँ जी
1: चलो गीता राही कुछ ठंडक मिल जाएगी ते दसो जी केड़ा गीत सुनोगे?
2: गीत पहले मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसका कोई गीत सुना तो
1: ठीक है जी, जरूर सुनावांगे पर एक छोटे जे अंतराल तो बाद आवांगे
2: जी मैं।
1: ठीक है जी,
2: धन्यवाद।
1: ते लो जी साडी नाल गल कर रहे ने साडी सुरुते ते प्रोग्राम चल रहे है जी। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शिरकत कर सकते हो, अपनी पसंद दा हिंदी फिल्म गीत जिहड़ा उस नूं सुन सकते हो, ते बस एक ही काम करना पैना है 0181 2342173 नंबर मिला के तुसी साडे स्टूडियोज दे विच पहुंच कर सकते हो ते सुन सकते हो अपनी पसंद दा गीत। ते असी अपने सुनन वालियां नूं दस दिए कि जेकर पंजाबी गीत सुनना चाहुंदे हो, फरमाइश पुगवाना चाहुंदे हो ते लिखती भेजना चाहुंदे हो ते फिर तुसी साडे अगले प्रोग्राम तमक जलंधर पेंडी दे विच वी अपना मैसेज जिहड़ा वट्सअप मैसेज भेज सकते हो, अपनी जगह अपना नाम लिख के अपने गीत की फरमाइश जिहड़ी है सानू लिखती रूप दे विच वी पहुंचा सकते हो। खैर प्रोग्राम चल रहा है जी हैलो फरमाइश ते तुसी सुन रहे हो हिंदी गीत जिन्हां दी फरमाइश सानू लगातार आ रही है ते इस दे विच एक छोटे जिहे अंतराल दा समां।
3: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समें विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समें दा ध्यान रखण।

0: ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: लो जी, हैलो फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है ते साड़ी कोल पहुंच गए हैं साड़ी अगले स्रोते। हैलो
2: हैलो मनु, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: सुखबीर सिंह शाहजी बोल रहा मैडम सुखरूर को।
1: जी सुखबीर जी, स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
2: शुक्रिया मनु, अज मसा टाइम लगा जी, कम तां अज बिजी रहने, मैं चलो अज दईए जलंधर तो टाइम।
1: ओए होए जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया समा दिता है ते फोन मिला लिया।
2: हां जी
1: हां, ते वड्डी गल है, फोन लग भी गया।
2: हां जी हां, लग गया ना, जो सिस्टम लाउने बाकी मैं भी फोन प्रोग्राम और शुरू करो ना, देख के प्रोग्राम है सदे को रात 10-10 बजे दे दिया करो फोन प्रोग्राम।
1: बिल्कुल जी, तू हडी ये गल सारी सुन रहे है ते पहुंच है।
2: हां अच्छा जी, हां जी
1: ठीक है जी। दसो जी, हम गीत केड़ा पंचाइए?
2: मैंने भी तेरी उदाम पे मरता हूँ, ये गाना लादो जी, बरसात मूवी का।
1: ठीक है जी, यही गाना सुनाने हैं क्योंकि साडे सरोते बिजी बहुत ने ना, इस करके एक लाइव फोन इन प्रोग्राम्स दे विच आ जान है ना।
2: हां जी हां जी,
1: एक कसी रिटर्न रख देता है फिर राती भी आ जी दे है ना।
2: हां जी हां,
1: तो चलो जी गीत सुन दे आप। ठीक है
2: ठीक है मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU

0: प्रोग्राम चल रहे जी हेलो फरमाइश ते लॉर्ड जी 0181-2342-173 नंबर दे नाल पहुंच गए ने साडी अगली फरमाइश करता। हेलो सत श्री अकाल जी। बिल्कुल जी, गीत सुनावांगे दादा फिल्म दा ही सुनावांगे जी। अपना शुभ नाम दस दियो सानू।
1: भजन सिंह जी।
0: भजन सिंह जी केड़ी जगह तो फोन कर रहे हो?
1: फिरोजपुर पिंड साहब वाले जी।
0: फिरोजपुर, ठीक है जी। गीत सुनाना है दादा फिल्म दा, है ना?
1: हां जी हां जी। प्रोग्राम बहुत चंगे चल रहे मैडम जी, चल रहे।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कृपया करके जाति प्रोग्राम सुन रहे हैं। हां जी, सारे प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: सारे प्रोग्राम सुनते हो? देहाती प्रोग्राम भी सुनते हो?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: शामी 6:30 बजे?
1: हाँ जी, शामी 6:30 बजे लगता है जना। मैडम जी देसिया प्रोग्राम होने चाहिएगा कि सामने वो बंद तो नहीं करता?
0: ना जी ना, बिल्कुल। तुसी आकाशवाणी दी वर्ल्ड सर्विस से सुनते हो प्रोग्राम? सारे प्रोग्राम जेड़े ने अवेलेबल ने
1: उस
0: प्रोग्राम देश पंजाब कह रहे हो किताबा पढ़न की घटती आदत अज की गल है। उत्थे जिहड़ा प्रोग्राम चलना है ते उत्थे फिर नजराना दे विच चिट्ठियां ते आधारित प्रोग्राम भी है अज दा, ठीक है ना? कथा लोक नाटक भी है ते नाटक दे विच एथे नाओ नाटक सुनाया जाना है। लेखक कुंदन लाल पट्टी हुई

0: क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ?
1: बापू तुम आगे बापू बापू
0: मुन्नी देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया।
1: गुड़िया? बापू करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए।
0: ईमान? ईमान क्या होता है आपा?

0: जी हाँ, सदा ही जय विघ्नहर्ता होणारी। खैर, प्रोग्राम भी बिना विघ्न दे चल रहा है क्योंकि साड़ी कोल फोन कॉल्स जड़िया ने वो लगातार आ रही ने ते साड़ी नाल जुड़ गई ने साड़ी प्रोग्राम दी आज दी आखिरी कॉलर। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: ओए होए, नमस्कार। प्रोग्राम दे विच मेरे तो बाद फीमेल वॉइस।
1: जरूर
0: सुनाऊंगी। अपना शुभ नाम ते दसो।
1: मेरा नाम प्रतिमा पुर
0: होशियारपुर तो। ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत भी है तुहाडा ते प्रोग्राम दे विच आखिर नंबर ते जिहड़ा फोन कॉल जिहड़ी ओह लग गई है साडे अज दी आखरी कॉलर बन रहे हो। कहिंदे ने अंत भला तो सब भला, ते मतलब जांदे जांदे भी गड्डी फड़ लैनी बड़ी वधिया गल है।
1: बहुत सोहना बोल रहे
0: मैम। हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़ी इच्छा सी तुहाडे नाल गल करने दी। हां जी,
0: वाह जी वाह। चले जी, ते साड़ी सुरती कहेंगे सानू गीत सुनने की इच्छा हो रही है तो हड़ी पसंद है ना, तो मैं बिल्कुल पारस मनी फिल्म का एक गीत सुनवा रही हूँ। फोन करने के लिए शुक्रिया। तुम इवें ही जुड़े रहो आकाशवाणी के नाल। हाँ, फोन कॉल कदे कदे जरूर करया करो।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू जी। लो जी, हजे वजे मुस्कुरांदी आवाज के नाल जड़ी साड़े प्रोग्राम दे आखरी कॉलर साड़े नाल जुड़े ते जल्दी दे नाल ये गीत सुनाने आ। ते हाँ, नाल ही नाल इसी गीत दे नाल तुहाड़े तो इजाजत भी चुमानी आए से दुआए से अरदास दे नाल कि खुशियां खेड़े रहन तुहाड़े वेड़े बरकरार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब से कुछ देर में नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ AI फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि AI मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल पहली V4+ भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक V4 की मौजूदा स्लोवाक अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और भाईचारे की भावना से जुड़ा है। एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नागोया में आज दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है। एशियाई खेलों में श्रीलंका के साथ महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 64 अंक बढ़कर 74,724 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 34 अंक बढ़कर 23,440 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदे हां प्रोग्राम टमक जलंधर पेंदी।

प्रोग्राम तमंग जलंधर दी लैके मैं निधि चुग हाजर हाँ जी। साडे प्रोग्राम च सानू कई सारे स्रोतियां ने वट्सएप मैसेज किए ने ते दस्या है कि उन्हां दी फरमाइश केड़े गीत सुनन दी हैगी है जी। तुसी भी साडे इस नंबर ते मैसेज कर सकदे हो, नंबर नोट कर लो 9465536070। आओ फिर देखदे हां कि इस नंबर ते पहला मैसेज किदा आया है। पहला मैसेज आया जी मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह ते सिमरजीत कौर हठूर दा। अगले साथी ने जी मिद्दू खेड़ा पिंड तो श्री मुक्तसर साहिब तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा, कृष्णा पार्क दिल्ली तो लिखते ने सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना ते गुरवंश सिंह जौड़ा। पिंड शाहपुर मैतपुर तो मैसेज है बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुल जोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर ते हरप्रीत कौर ते नाल ही गगनदीप सिंह दा। अगले साथी ने जी पंचकुला तो वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, एंजल, नेहा, अंजली, शुभम ते लवली। पंचकुला तो ही लिखते ने जी आशु चुग, अश्मी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक ढींगरा। अगला मैसेज है जी पिंड अलवाना अलवा मियाना तहसील पायल जिला लुधियाना तो दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबरजंग सिंह चीमा, महतबीर सिंह रायपुर दा। अगली फरमाइश आई है जी रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा दी नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो। श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिखते ने रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, स्वर्ण सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो, सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा, निशान शर्मा, अनुराधा शर्मा ते निवान ते निया शर्मा ये लिखते ने जी ऊना हिमाचल प्रदेश तो। रमी हैबोवाल लिखते ने जी हैबोवाल कलां हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो, पिंड साबुआना फाजिलका तो मैसेज है करम कंबोज, चरण कंबोज, रियांश मानव, अनुरीत कंबोज ते परीश कंबोज दा। ते दत्रेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने जी हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा ते नोखे लाल वर्मा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां शमशाद बेगम दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा जी तमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया जी सिद्धार्थनगर दरियापुर बागली तो गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले अशोक येले दा अगले साथी ने मक्खू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज अगली फरमाइश है न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरिंदर शर्मा सीमा शर्मा प्रिंस शर्मा दी पिंड रामा जिला मोगा तो लिखते ने दविंदर पाल शर्मा गुरदीप रानी साहिल शर्मा वीरचंद उर्मिला देवी गांव कमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश टूकिया प्रमिला टूकिया ज्योति अमना साइना शिवम टूकिया ते ईवा धारनिया अगले साथी ने पिंड इस्लामवाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगुन राठी लवकुश वर्मा छत्रपाल सिंह खंगूरा रजिंदर सिंह बाबू सिंह मेनेवाला काका बट्टी हरजीत कैंट लिखते ने जी मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो गुरमीत सिंह साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो पटेल नगर मलोड़ तो मैसेज है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप आरजू ते गुड्डू जाजोरिया दा वरिंदर शर्मा कमलेश शर्मा दीक्षा शर्मा रॉबिन शर्मा ते व्यान शर्मा लिखते ने धर्मकोट जिला मोगा तो चकला बाजार समाना शहर तो फरमाइश है पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू स्माइल खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल ते कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय उषा रॉय अमित कुमार रॉय हैप्पी राय दी दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक रॉय रोशनी राय ते प्रांजल राय दी ते अगला मैसेज है पिंड खाने की डाब मलोड़ तो शमशेर सिंह कौलदर जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर तरनवीर सिंह ते मनताज दा आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा अगला गीत हाजिर कर दें गुरदास मान दी आवाज़ विच।

मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल निताशा ते कैरवी तनेजा दा लेवाई छत्तीसगढ़ तो फरमाइश आई है गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी दी। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा लिखते ने। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे ए मैसेज है जी शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो। पिंड अरायन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल ते पूनम चालिया। तालीवाला बोतला जिला फाजिलका तो मैसेज है अमीरचंद, नवदीप चतुर्थ, अर्नव चतुर्थ, लाजवंती ते अनीता रानी दा। मेन बाजार मंडी लाधुका तो लिखते ने अनमोल चावला, देवी दीपिका चावला ते किरणा चावला, सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो। पिंड चंजेड़ी तहसील खरड़ जिला SES नगर तो लिखते ने जी लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक, सुखचैन सिंह पवार सनौर तो, परवीन कौर, हरमनजोत कौर, मनजोत कौर, जोबन प्रीत सिंह पवार दे नाल। अगले साथी ने शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिट्टू सप्पल, अमनजोत सिंह सप्पल, बिद्दर खेड़ी ते परमजीत सिंह पूर्वा, तुलसी मस्कीन, वीरा मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट ए लिखते ने जी चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना दे नाल। कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र कुमार लिखते ने पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो। रकेश, नरेश, जगदीश ते बलदेव प्रेमी ए मैसेज आया जी जंडवाला चरच जंडवाला तो। पिंड डाकखाना खुईया सर्वर फाजिलका तो मैसेज है रमेश बिल्ला चावला, रायजल हेजल, विहान चावला, आस्था, जयश्री, संतोष चावला, हेमन दीपक, रमेश चावला, रिजू, बब्बू ते विहू चावला दा। ते अगले साथी ने जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान ते बेबी गर्वी। आओ फिर इन्हां दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेकहोल्डर्स टू डिलीबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों

0: में वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ हुण सुनदे आं प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: कि कितनी सी आज तक, क्योंकि
1: जी
0: मेरे 9 to 5 जॉब है, उस तो बाद में जे पूरा दिन मेरा कोल हुंदा, फिर तो मैं एग्जीबिशन डेली कर दी,
1: ठीक है।
0: बट मेरे को काफ़ी घट टाइम हुंदा, तां मैं हजे तक एक ही एग्जीबिशन की थी, बट मैं नेक्स्ट ईयर जरूर करांगी।
1: जी मतलब साल दे विच तुसी एक एग्जीबिशन का प्लान हजे रखा हुआ है।
0: हाँ जी, एक तो है।
1: ठीक है जी, तुसी दस्या कि हुण फेस्टिवल सीजन जो आउंदे ने तां उदों सानू अलग तरह की कुछ तैयारी करनी पैंदी है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी हुंदी है।
0: हाँ, हुण दिवाली वास्ते कैंडल्स
1: जी
0: बहुत सारी चलनगियां, हुण मिठाई वाली अजकल कैंडल्स आ गई, वह बहुत चलनगियां
1: जी,
0: ते ऐदा दियां होर नवियां नवियां चीज़ां जिते डेकोरेशन समान
1: बिल्कुल,
0: बने होते हैं। हाँ जी
1: बिल्कुल, कुछ वक्री तरह की चीज़ मिले ना तो असी सारी लैना भी चाहते हैं।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि मार्केट दे विच ऑनलाइन असी इको तरह की प्रोडक्ट्स देखते हैं, पर
0: हाँ
1: जो आर्टिस्ट ने अपनी इनवेंशन की है, अपनी कला के नाल कुछ नवा सिरजिया है, वह कस्टमर नूं वाकई पसंद आता है।
0: हाँ जी
1: जी, कभी इस तरह भी होया है कि जो तुसी एग्जीबिशन दे विच जांदे हो या फिर किसी फ्रेंड ने तुहाडी एक क्रिएशन देखी होवे ते बार बार किसी प्रोडक्ट नू बनवाया होवे तुहाडे तों?
0: ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे तो समान लिता है क्योंकि उन्होंने लाइव देखा है मेरा समान, मैं डेली फोन कवर नवा लेके जानी हूँ अपने हॉस्पिटल विच
1: जी,
0: तो मैं शौक है, तो फिर उन्होंने मेरे तो समान बनवाया काफ़ी ज़्यादा।
1: जी तेरे फ्रेंड्स मतलब इन्ने ज़्यादा सपोर्टिंग ने।
0: हाँ जी
1: इस फील्ड में भी सपोर्ट कर।
0: हाँ जी, सब तो ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरा समान लिता है।
1: ठीक है, हुण तुहाडी गलबात गल सामने आई है कि तुसी फोन कवर भी डिजाइन करते हो।
0: हाँ जी
1: ठीक है जी, तो ये डिजाइनिंग दे विच किहो जिहा मटीरियल यूज करते हो तुसी?
0: कोई रेजिन फोन कवर लैके जिहड़ा ट्रांसपेरेंट फोन उस दे उत्ते रेजिन दी डिजाइनिंग हुंदी है। हाँ जी, वो मैं देखा नहीं सी कभी ऑनलाइन, बस मेरी अपनी सोच सी, बट ऑनलाइन भी लोग बनाते इन्ना ज़्यादा नहीं है अजे फोन कवर के उत्ते रेजिन, बट हैगा
1: जी। रेजिन कल्चर की असं जो गल करते हैं अजक बहुत ज़्यादा ट्रेंड दे विच है तो बहुत चंगा भी लग रहा है, तुसी किहड़े किहड़े आर्टिकल्स से किहड़े चीज़ों से रेजिन ट्राई कर चुके हो?
0: मैं कोस्टर्स बना चुकी हाँ, फोन कवर सब तो ज़्यादा बना चुकी हाँ, तो जो मेरे ट्रिंकेट ट्रेज बनानी हाँ उसके उत्ते मैं रेजिन की कोट कर दिनी हाँ
1: जी।
0: कीचेन बना चुकी हाँ, तो मैं ईवन मंदिर वास्ते भी डैशबोर्ड स्टैंड वो भी बना चुकी हाँ
1: जी। कभी इस तरह भी होया कि तुसी जिहड़ी चीज़ हजे नहीं बनाई तो किसी ने कस्टमाइज करन नूं तुहानूं कहा होया तो तुसी वो भी बना दो?
0: हजे तक होया सी फोन कवर दा होया सी, वो कहिंदी मैं बेकर हाँ तो मैनूं दसो मैनूं अपनी फोटो चाहिए बेकर वाली, फिर मैं उसके फोटोज़ दा स्टिकर्स बनवाए, फिर उसते लगाए, फिर उसके उत्ते रेजिन आर्ट किया सी मैं।
1: जी, तो किन्ना समा लगता है जेकर असी एक आर्टिकल की गल करिए कि एक आर्टिकल नूं जेकर तुसी बनाउण लगे हो तो उस दे विच प्रॉपर सिटिंग दे विच किन्ना समा लग जांदा है?
0: फोन कवर दे विच तां 1 आवर लगता है, बट जे कोस्टर बनाओ इट्स अ 3 डे प्रोसैस, मतलब ऐदा नहीं कि तुहानूं 3 डे लगातार, बट 3 डे हाफ एन आवर तो देना ही पैंदा है या उस तो ज़्यादा भी देना हो सकता है।
1: तो कभी इंज भी होया कि तुसी अपने हॉस्पिटल दे विच ड्यूटीज के दौरान भी मतलब कि तुसी आज हॉस्पिटल जाना है पर आज तुसी कस्टमर नू दूसरी तरफ ये चीज़ भी बना के देनी?
0: नहीं नहीं, मैं कस्टमर नू दस दिनी है कि मेरी 9 to 5 जॉब है तो मैं इसे दिन ही प्रोवाइड कर पावांगी, मैं इदा हॉस्पिटल दे उत्ते नहीं मैं इदा कीता।
1: जी जी ठीक है जी, दोनों पासे ताड़ियां ड्यूटीज वंडियां हुई ने, दोनों पासे तुसी अपनियां जिम्मेदारियां बड़ियां बखूबी निभाते हो। शीनम जी, जिस तरह असी गल करते हैं आर्ट की, तो अजकल असी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाजारों चो शॉपिंग करते हैं, मॉल्स चो शॉपिंग करते हैं, पर असी हमेशा गल करते हैं कि जिस तरह साढ़े प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा कि वोकल फॉर लोकल, जिहड़े भी आर्टिस्ट ने जिहड़े कारीगर ने उन्होंने मेहनत का मुल पै सके, नाल ही कला नूं प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए जो कस्टमर है वह कारीगर दे कोल जाए तो उसकी कला नूं खरीद के उसनूं मोटीवेट करे, तो इस दे विच अर्थव्यवस्था दे विच भी बड़ा चंगा बैलेंस बनिया रहिंदा है।
0: हाँ जी,
1: सो इस पासे तुसी साडे कस्टमर्स नूं या कह लो कि स्रोतियां नूं की कहना चाहोगे?
0: कि ओबवियसली सानूं साडे जिहड़े लोकल बिजनेसिस हैगे, ईवन कपड़िया विच भी सानूं लोकल बिजनेस नूं ही ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, लोकल नूं सपोर्ट करोगे तां ही देश अगे वधेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ते नाल ही जो शौक है जज्बा है जेकर किसी मन दे विच है तो वह दूसरे तक पहुंचे तो एक नवी वक्री तरह की चीज़ सानू मिलेगी जो कि बाजार तो बिल्कुल वक्री होगी।
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी होंदी है सारी।
1: जी, ते क्रिएटिविटी दे विच कोई लिमिटेशन नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: ये एक अजिहा खुला आसमान है जिस विच तुसी हर वारी कुछ नवा सिरज सकते हो।
0: हाँ जी,
1: इसलिए तुसी वख-वख चीज़ां ते जो अपना आर्ट है वह ट्राई करते रहते हो।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: ठीक है, तो हुण असी गल करते हैं कि एक बार फिर कि जिहड़ी महिलावां तुहानूं सुन रही ने तो वह भी तुहाडे वांग काम काज दे नाल कुछ ना कुछ समा कढ़ना चाहुंदियां ने अपने हॉबीज़ दे लई, अपने पैशन दे लई, उन्हां नूं तुसी किस तरह मोटीवेट करोगे?
0: मैं कहनी हां जो भी तुहाडा शौक है एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। हुण मेरे नाल दे काफ़ी लोग है जो कहिंदे कि सानूं रील्स बनानी है, मैं कहनी हां अज तो शुरू करो एटलीस्ट स्टार्ट, जो भी हैगा जे तुहानूं कुछ बनाना उसका

0: रॉ मटेरियल बस आज ही मंगवा लो, ऐदा नहीं कि मैं कल करांगी, फिर नहीं कदी हो सकता।
1: जी
0: जे कुछ बनाना है तो उसकी क्लासेस लेनी शुरू कर दो, ऐदा किसी की वेट नहीं करनी, अपनी लाइफ जीने लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअलिटी है ते तुहानू फ्रीडम रब ने दिता है, ते फिर हुण किसे होर तो क्यों मंगना है।
1: एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप भी हुंदा है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: जी, ते जेकर असीं अपने लिए कदम चुकदे हाँ तां फिर असीं खुद ब खुद अपने लिए ते दूसरां दे लिए बहुत वड्डी हैल्प बन सकते हैं।
0: हाँ, अपने बच्चों ने वो तुसीं एग्जाम्पल सैट करोगे।
1: जी
0: हाँ जी, जिदा हूँ मैं छोटी सी तो मैं पता सी मैं वे होकर काम ही करना, क्योंकि मेरे मम्मा वर्किंग सके, मेरे लिए नॉर्मल ही नहीं है घर बैठना।
1: जी
0: हाँ जी,
1: घर के मतलब इस तरह का माहौल देखा कि सारे काम से जा रहे हैं तो कोई फ्री नहीं है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर शीनम जी, हुण आखिर दे विच असी ये तुहाडे तों पुछना चाहवांगे कि तुसीं दस्सिया कि जिहड़ी साडा पैशन है उसनों करन दी सानू फ्रीडम परमात्मा ने दिती है।
0: हाँ जी,
1: अपनी लाइफ नूं जीवन दी खुली तरह जीण दा ये हक सानू उस परमात्मा ने दिता है। केड़ी चीज़ है जिहड़ी सानू रोकदी है अक्सर महिलावां नूं खास तौर ते, जिस दे कारण असीं अपने शौक नूं समां नहीं दे पाउंदे?
0: बेसिकली उन्हां नूं फैमिली तो डर लगता है, फैमिली तो परमिशन का डर लगता है, मैं सब तो ज़्यादा आई लगता है। बेसिकली गर्ल्स नूं अपने वूमेन नूं अपनी आवाज़ उठानी पएगी किसी ना किसी दिन। लड़ाई सब दी मतलब अपनी अपनी है,
1: जी
0: बट करना ही पएगा क्योंकि असी आज़ाद होना है। ताई कहंदे कुछ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कहंदे ना कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मैन एंड नॉट टू वुमेन।
1: जी
0: हाँ जी, सानू बस आजाद होने की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी,
0: इक्वालिटी की जरूरत है।
1: जिस तरह तुसीं एक बहुत ही क्रिएटिव काम दे लई एक समां कढ़दे हो, असीं अक्सर इंज करदे हां कि अपना समां बहुत रील्स देखण दे विच या फिर इंज ही गलबात दे विच व्यर्थ कर देंदे हां। मोबाइल जदों चुकदे हां तां पता ही नहीं लगदा कि वह समां कदों गुजर गया, तो वह समा कितने चंगी जगह भी यूज हो सकता।
0: हाँ जी बिल्कुल, उ मैं पहले ही कहा सीगा कि असी रील्स विच वेस्ट कर दें टाइम, वो तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। गॉसिप विच बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, बस प्रोडक्टिविटी कुछ करो फिर अगे वधो।
1: ताडा कदे मन नहीं किया कि बैठ के आराम दे नाल रील्स देखो?
0: मैं विच विच टाइम वेस्ट कर लैनी हूँ, बट मैं हुंदा है मैं 6 बजे तो बाद कोई काम दसो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। ईवन मेरे हस्बैंड ने एक बार कहा कि मेरे ना शोरूम आ जाया कर कि मेरा थोड़ा काम कटेगा, मैं अगले दिन पहुंच गई। मैंने कहा दसो काम, कहते मैं तो मजाक कर लिया सी, मैं कहा मैनू काम चाहिए तुसीं दसो।
1: बहुत वधिया गल है, इहो जी एनर्जी हर एक औरत दे अंदर होवे, इह जज्बा होवे, उसके लिए खुला आसमान है, कुछ भी कर सकती है। तो तुहाडे फ्यूचर प्लैन्स कुछ ने कुछ इस आर्ट नूं लै के खास तौर पर?
0: एग्जीबिशन जी है फॉर नाउ, जे होर कोई मैं क्लासेस लगाना चाहवांगी मैं करांगी, होर अगे वधना है बस।
1: जी
0: जी, रुकन नहीं देना किसी करके, नहीं मैं रुकन देना हूँ,
1: मतलब कोई भी तुहानू रोक नहीं सकता।
0: हाँ जी, मैनू कोई नहीं रोक सकता, मेरे हस्बैंड नूं पता हूँ, वो कहते जा जो करना कर उड़।
1: जी, असं उम्मीद करते हैं कि तुहाडे सुपने साकार होण, ते तुसीं जो भी तुहाडे हाथ दे विच आर्ट है ये बहुत ज़्यादा वधदा जाए, क्योंकि आर्ट की कोई सीमा नहीं है। तुसीं इसनूं लगातार जेकर करते रहोगे तो कुछ नवं सिरजते जाओगे, समाज में कुछ नवं देंदे जाओगे, बहुत सारिया कलावां तुहाडे हाथ विच होण, ते नाल ही तुसीं मरीजां की भी सेवा करते रहो।
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीनम जी, तुसीं अज साडे नाल प्रोग्राम चाहे साडे नाल गलबात कीती, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
2: जी। प्रोग्राम उडारियां सुन रहे से तुसी, उडारियां सिलसिले दे नाल जुड़े हुए से, जिते डॉक्टर शीनम वादमहारा दे नाल गलबात कर रहे से साडे एंकर पूनम। बहुत वधिया गलबात, और उन्होंने हत्थी कला दी जो गलबात कीती ना, वाकई बहुत मज़ा आया। और तुसी मनोगे कोमल के अज हत्थी कला दी जिहड़ी गल कर रही है, असीं साडे विरसे दे विच बहुत कुछ दसना है।
3: जी बिल्कुल, ते साडे विरसे च असीं बहुत कुछ दसांगे, पहले श्रोतियां नूं इक गीत सुना दिए।
2: जी

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: मैं थे
2: तेनू नहीं अनु मोबाइल चार्ज करना सी
1: दिमाग चार्ज कर रखना
3: अजय पब्लिक पोर्ट तो चार्ज कीता ता तुहाडा निजी डाटा हो जाएगा पब्लिक
1: देखिया
2: पापा रुको मैं पे करदा हां
4: नो सिग्नल
3: हुन की करोगे
4: मुफ्त वाईफाई है ना
1: मूर्खा सुधर जा
3: पेमेंट्स ली कोई ओपन वाईफाई नहीं
2: मतलब धोखा तड़ी नु बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो वित्तीय तौर पे स्मार्ट
6: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा कौन रचेगा इतिहास कौन चुम्मेगा जित दा शिखर भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते
7: जी बहुत खूबसूरत गीत सी ते इस गीत दे नाल नाल एक बहुत ही खास गल है जिहड़ी अपने श्रोतियां नाल ते खासकर तुहाडे नाल वी मैं शेयर करना चाहुंदी आ
8: जी
7: कि साडी सरकार ना समय समय ते बहुत सारे ऐसे प्रावधान लेके आंदी है बहुत सारी ऐसी सहूलता दिंदी है आम आदमी नू ताकि उहदी जिंदगी होर सुखावी हो सके और साडे देश दी तरक्की होए साडे देश दा ढांचा जड़ा है होर मजबूत बने आर्थिक पक्षों या होर भी किसी भी पक्षों ते इहदे वास्ते कई तरह दे प्रावधान लियाए जांदे ने ते हुण एक खास सीरीज जिहड़ी उह लिखी गई है जन सेवा तों देश सेवा तक जदों असीं इहदी गल करदे आं ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਿੱਕਿਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

0: जी बस दे प्रोग्राम सुन रहे हो तो साडा विरसा जिहड़ा प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे असीं दस रहे हैं कि किस तरह साडे विरसे दे विच कढ़ाइया की महत्ता सी जिहड़ी पंजाबी पारंपरिक कढ़ाइया ते बुनतियां कीतियां जांदियां सी। कोमल तुहानूं दसुती दे बारे पता है? दसुती ना ज़्यादातर तुसीं किसी भी घर दे विच देखोगे तुहानूं देखण नूं मिलेगी। ये मोटे सुती कपड़े उत्ते क्रॉस स्टिच राहीं कीती जाण वाली कढ़ाई है। इस नाल ज़्यादातर मेज़पोश सराहणे ते कवर ते चादरां तैयार कीतियां जांदियां ने।
1: बिल्कुल, ते ये जिहड़ी कढ़ाई है ना कई चीज़ां ते कीती जांदी है जिवें खद्दर ते खेस ते खेस जिहड़े ने बड़े सोहने सोहने सजाए जांदे ने रंग बिरंगियां कढ़ाइयां करके और अलग अलग पैटर्न धारियां बनाईयां जांदियां ने उन्हां ते बॉर्डर भी बनाए जांदे ने। इस तरह दरियां दरियां ते भी बड़ी प्यारी प्यारी कढ़ाई कीती जांदी है और वह भी बहुत सजा के एक अलग ही उन्हां नूं शेप और जिहड़ी शक्ल दित्ती जांदी है। चादरां हो गईआं और सर्दियां दे विच जिहड़ी है वह बुनाई की जाती ऊनी धागे नाल अलग अलग रंग दे ऊनी धागिया नाल बुनाई की जाती है शॉलों ते कंबल ते खेस ते गर्म चादरों ते ताकि वह यूज़ कीतियां हुई बड़िया सोहनिया लगन और सारिया तो वखरा नज़र आन। ते जदों ये सारी कढ़ाइया की असी गल करते हाँ ये सारी हाथ की महारी होंगी है कि जदों आप हाथ नाल बड़े शौक नाल जिहड़िया ने साडे पैणा इन्हां नूं किता भी बना लैंदे ने।
0: बिल्कुल,
1: ये शौक अलग चीज होंदी है। बिल्कुल, जदों इन्हूं किता बना लिया जांदा है ते यही जिहड़ी साडे देश ही नहीं विदेशां च जाके भी धूमा पाउंदी है, बाहरों भी बहुत सारी डिमांड आउंदी है ते जिन्नू भी यह कारीगरी आउंदी है अगर वह किता नहीं बना रहा तो बना सकता है, इहदे च कोई वड्डी गल नहीं। बस जरूरत की है कि असी उस लाइन ते अगे चलीए उहनूं टीचा बनाईए ते उहनूं अगे वधीए। जदों असी इहनूं टीचा बना के अगे वधांगे ते यह साडी कमाई का बहुत वड्डा साधन जिहड़ा है साबित हो जाता है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो।
1: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और 1 उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं।

एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुण तो कुछ देर बाद 1:15 तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे फौजी वीरां दे मनोरंजन लई फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस दौरान 1:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां ते 1:50 ते उर्दू च खबरां। बाद दोपहर 2:30 का समा रहेगा लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती का। अज इस विच तुसी देवराज ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सुणोगे। मुख खबरां तो बाद 4:02 ते आनंद माणना पंजाबी फिल्म संगीत दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते 5:30 सरवण करना साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। छे बजे तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार ते 6:20 ते प्रादेशिक खबरां। साढ़े 6 सुनना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी। आज इस विच तुसी मौसम दे हाल ते खेती समाचार तो इलावा सुनोगे एक सफल किसान बलविंदर सिंह नाल हुई गलबात। सात बजे आनंद मानना पंजाबी संगीता। 7:10 ते साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुन सकोगे तुसी विशेष प्रोग्राम जन सेवा देश सेवा। सात बज के 45 ते सुनोगे डॉक्टर कमलजीत सिंह की अंग्रेजी वार्ता इंपैक्ट ऑफ इंफोटेक ऑन सोसाइटी। आठ बजे का समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। साढ़े आठ बजे का समा रहेगा पंजाबी खबरां दा ते उस तो बाद पंजाबी संगीत तो बाद 8:45 ते सुन सकोगे समाचार संध्या। 9 न्यूज़ एट 9 9:15 स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। साढ़े 9 सुनो प्रोग्राम खेड संसार। आज इस विच तुसी हॉकी खिडारी मनमीत सिंह राय नाल हुई गलबात सुन सकोगे। दस बजे सुनना वीवियां एशियन खेडां दियां मुख झलकियां साढ़े दिल्ली केंद्र तो। 10:30 का समा

फौजी वीरो मोहब्बते फिल्म दे इस खूबसूरत गीत दे तो बाद सुनदिया राहत फतेह अली खान दी आवाज विच प्रोग्राम दा अगला गीत फिल्म दा नाम है लव आजकल।

0: वीरो, इस प्रोग्राम च वापस आने हैं बस एक छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: 7 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जानगियां। सारे श्रोतियां नु बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखन।
1: ई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे आ पंजाबी खबरां।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का आगाज किया। पानी की सूझबूझ नाल वरतों ते संभाल ते दिता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलों के मुखियां की तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब को मनाने 30 नवंबर तो 4 शोभा यात्रावां कढ़ने का किया फैसला। एशियाई खेडों भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले श्रीलंका 147 दौड़ों नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। भारतीय सिनेमा विच एक नवा अध्याय सिरजते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 1954 च स्थापित पुरस्कारों भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों विचों एक मनिया जाता है, जो फिल्म फीचर फिल्मा, गैर फीचर फिल्मा ते सिनेमैटोग्राफी समेत वख-वख श्रेणियों च कलात्मक ते तकनीकी उद्यमता नूं मानता देंदे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय की एक नवी नीति के हिस्से वजों पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी तो बाहर प्रदान किए जा रहे ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण नूं दर्शाते हुए एकता नगर विखे समारोह च देश भर दीआं सिनेमैटिक प्रतिभावां शामिल होणगीआं। राष्ट्रपति तजर्बेकार फिल्म अदाकार अनंत नाग नूं साल 2024 लई दादा साहब फालके पुरस्कार भी प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने अज नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने पानी की सूझबूझ नाल वरतों ते संभाल ते जोर दिता। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल हफ्ता जल प्रबंधन दीआं चुनौतियां ते सारे हिस्सेदारां दरम्यान विचार वटांदरे लई एक महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हरेक नागरिक नूं सुरक्षित ते लोड़िंदा पीण वाला पानी प्रदान करन लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पानी एक सांझा स्रोत है ते इस लई जल रखा भी एक सांझी जिम्मेवारी है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
2: इस साल जल हफ्ते का विषय जलवायु पक्षी पानी प्रबंधन रखा गया। यह 5 रोजा कौमांतरी समागम दौरान नीति निर्मातावान, जल खेतर के माहर, खोजकर्ता, उद्योग, सिविल समाज के नौजवान पेशेवर उभर रही पानी नाल संबंधित चुनौतियां ते हल ते विचार चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलों के मुखियां दे तीजे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भविख दीआं पीढ़ियां नूं नशियां दे खतरे तो बचाउण दे तरीकियां ते चर्चा करना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वल्लों आयोजित कॉन्फ्रेंस विच 36 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलों के मुखी शामिल हो रहे ने। कॉन्फ्रेंस का विषय संयुक्त संकल्प सांझी जिम्मेवारी रखा गया। एक कॉन्फ्रेंस 2026-29 के नशा नियंत्रण टीचा नूं प्राप्त करन च कार्यबलों की भूमिका ते चर्चा करेगी। यह नशियां कारण सप्लाई मंग ते नुकसान नूं घटाउण लई केंद्र सरकार दे उपरालियां नूं होर मजबूत करन लई ढुकवीआं नीतियां अपनाउण ते वी ध्यान केंद्रित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के नौजवानों नूं नशियां दे माड़े प्रभावों तों बचाउण लई एक मिशन मोड ते काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक विकसित भारत का टीचा रखा है ते यह नशा मुक्त भारत बनाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। चोण कमिशन ने अज राज्यसभा दीआं 11 सीटां लई चोणां दा ऐलान कर दित्ता है। इस विच उत्तर प्रदेश दीआं 10 सीटां ते उत्तराखंड दी एक सीट शामिल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी दे नेता राम गोपाल यादव, बीएसपी दे राम जी ते 6 होरनां दा कार्यकाल 25 नवंबर नूं खत्म हो रहा है। उत्तराखंड दे नरेश बांसल भी 25 नवंबर नूं अपना कार्यकाल पूरा कर रहे ने। चोण कमिशन ने पछमी बंगाल च राज्यसभा दी एक सीट लई जिमनी चोण दा भी ऐलान कीता है। तृणमूल कांग्रेस

0: संक्रमित गर्भवती मातों उसके होने वाले बच्चे HIV की बीमारी हो सकती है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे आं सवनंद किरकिरे ते अमिताभ भट्टाचार्य दी आवाज़ विच। फिल्म दा नाम है लुटेरा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने की

0: ले सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग से होने करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी।

0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
3: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
4: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्रीय शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
5: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में

0: जिला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
1: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
0: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
4: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदिया प्रोग्राम रंगली धरती। आज इस विच तुसी देवराज ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सुनोगे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम रंगली धरती च, देवराज ते उहनां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां।
2: जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिआं जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: प्रोग्राम रंगली धरती च तुसी सुन रहे हो देवराज ते उहनां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां। आ हुण सुणदे हां उहनां दी भेंट राज रानी मंदिर विच राज करे।

नमस्कार। तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च दोस्तों असीं तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करदे हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हां। दोस्तों उंज तां हर बंदे दा आपो अपना रुतबा हुंदा है, पर कई लोग अपना रुतबा बनाए रखने लिए हमेशा आकड़ ते कोड़े बोल बोलते रहिंदे हन, पर असीं तुहानूं दसना चाहांगे कि हमेशा मिठी ते प्यारी भरी बोली बोलनी चाहीदी है ते गलबात करन वेले हमेशा अपने चेहरे ते मुस्कान रखनी चाहीदी है। इस नाल तुहाडा रुतबा घटदा नहीं बल्कि वधदा है ते हर कोई दुबारा तुहाडे नाल गलबात करन दी भी इच्छा रखदा है। दोस्तों प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने कुलदीप सिंह संधु, गुरविंदर सिंह संधु, यादवीर सिंह संधु। इसे तरह आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तों ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां, गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक, पिंड खाने की ढा मलोट तो शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनराज, छत्तीसगढ़ पाटापारा दतरेंगी तो द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा ते चावेंद्र कुमार वर्मा, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल ते बिट्टा बजाज, महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत, रविदास नगर मलोट तो नानक चंद जाजोरिया, विजय कुमार रातिया, बंटी कुमार पलखड़िया, रवि कुमार जसल, पिंड पंजौनिया जिला जलौन यूपी तो सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आ प्रोग्राम दा पहला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सी गुरदास मान दी आवाज़ विच खूबसूरत गीत परांदे। दोस्तों प्यार ते मुहब्बत करन वाले दे दिलां विच बहुत सारियां गल्लां हुंदा ने, ते दोस्तों दिल वाली गल किसे दिल वाले नाल ही करनी चाहिए है, क्योंकि होर किसे ना कीती गल तमाशा बन जाती है। इसलिए अपनी गल बड़ी सोच समझ के सामने वाला देख के करनी चाहिए है। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिदड़बाह तो मनजीत तनेजा ते परवीन तनेजा, इस तरह मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, सुखबीर सिंह छाजली तो, बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जग्गा धौला किंगरा तो, सहारनपुर तो आशा नारंग ते सुरेश नारंग, पिंड अतापुर कलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, छत्तीसगढ़ तो दतरंगी तो भागवत वर्मा, लेवई तो गुलाबदास माणिकपुरी, लक्ष्मणपुर तो विश्वनाथ साहू, तो चरडोंगरी पिपरिया तो दुर्गादास साहू, इस तरह पटेल नगर मलौट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, तो बेबी आरजू जाजोरिया, चाहल कला नवा शहर तो अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर, अंबा चाहल, गुरु रविदास नगर मलोट तो नानक चंद जाजोरिया, बंटी कुमार पलखड़िया, सुनील कुमार बुड़ा, विजय कुमार रतिया, रवि कुमार जसल, जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीच भाटिया, पप्पी भाटिया, पिंड इस्लामवाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल राठी, ओम प्रकाश राठी, शगन लाल राठी, हनू राठी, लवकुश वर्मा, अमदीप गौड़, किचन कंचन बिराट, विक्रम बिरट, कुलदीप ढींगड़ा पिंड कुड़ियाणा तो, बाबू सिंह महीनेवाला, छत्रपाल सिंह खंगड़ा, गुरमेत सिंह विरक, इस तरह पिंड कमल वाला तो रणजीत कौर भट्टी, बोर्ड सिंह भट्टी, काका भट्टी, होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। दोस्तों

प्रोग्राम च शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं जरूर पूरा किया जाए। दोस्तों प्रोग्राम के अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने पिंड रायपुर डब्बा पंजाब तो फौजी मक्खण सिंह बूटा बली शनी अते बाकी सारा परिवार चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद ते गुरशबद खुरजा उत्तर प्रदेश तो तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा इसी तरह डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला जयपाल सोनू जयपाल ममता जयपाल दिशा मोक्ष सुशांत ते विक्रम जयपाल। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत निरेंद्र बीबा दी आवाज़ विच।

दोस्तों तुसी सुन रहे सीगे एमी विर्क दी आवाज़ विच खूबसूरत गीत मैं चन्न सितारे की करने। प्रोग्राम की अगली फरमाइश से सानू चिट्ठिया भेजने वाले ने करमवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुछो कैंचियां बठिंडा तो, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन ते अभिजात। इस तरह लाडी सिंह धालीवाली समाना पटियाला तो, इन्हां वल्लों कबीर सिंह, कबीर संधु ते जसवीर संधु, बंसी लाल संधु।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली विच नवें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का आगाज किया। पानी की सूझबूझ नालों वर्तन अते संभाल ते जोर दिता सूझबूझ नाल वरतों ते संभाल ते जोर दिता। गृह मंत्री अमित शाह वालों आज नवी दिल्ली विच पंजाब समेत 36 सूबों अते केंद्र शासित प्रदेशों के नशा विरोधी कार्य बलों के मुखियों की तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब को मनाने लई 3 नवंबर तो 4 शोभा यात्रावां कढ़न का फैसला किया। खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह कुबिया ने पंजाब के किसानों नूं पराली ना साड़न की अपील की। कहा, पराली एक स्रोत है, रौंद खूंद नहीं। औरतों बारे राष्ट्रीय कमिशन के चेयरपर्सन विजया रहाटकर 23 सितंबर नूं तरनतारन जिले का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों कौमी प्रधान नितिन नवीन वालों एकता स्थल माधोपुर तो शुरू की गई नशा मुक्त पंजाब यात्रा नूं 5वें दिन डेरा बाबा नानक पहुंचने ते लोगों वालों भरवां हुंगारा मिलिया। पंजाब के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने डॉ भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ एमिनेंस नंगल विखे 11 करोड़ रुपए की लागत नाल 500 सीटां वाले अति आधुनिक ऑडिटोरियम की उसारी शुरू की। एशियाई खेडां विच भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले विच श्रीलंका नूं 147 दौड़ा नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। समृति मंदाना ने मैच विच 11,000

दौड़ा पूरियां करके इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। एसी आज दिया न्यूज हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण आनंद मानदे हां पंजाबी फिल्म संगीता ते शुरुआत करदे हां फिल्म गुड्डी देख गीत दे नाल, जिसनू आवाज दिती है मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर ने।

भगत तेरा मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी ताव दे। गुरबाणी अनुसार जिहड़े जीव उस प्रभु की कृपा तो वांझे हन उन्होंने सो दर नहीं टुकदा, बस वह संसारी भज दौड़ विच ही भटकते रहते ने। यही कारण है भगता तै सहसारिया जोड़ कदे न आया, गोबिंदता भाव भगती ते ही रीझदा है। इसे करके अखाण है कि जिमें मावां नूं पुत्तर प्यारे, भगत इंज ही रब नूं प्यारे हुंदे ने। भगतां नूं अकाल पुरख ते अटल भरोसा हुंदा है। भगतां ते संतां दी टेक सहारा आसरा हे प्रभु तू ही है जो सच्चा ते सिरजणहार है। इसे करके सच्चे गुरु पास बेनती है कि मैनू नाम दा आधार बख्शो, क्योंकि जदों प्रभु मेहर दे घर आउंदा है तां संसार विच्चों तिन्ने ताप निवार दिंदा है। बलिहारी उस वडभागे जीव तो जो तेरे चरणा तो सदके है, जिस करके हे प्रभु तेरा मिलाप हासिल होया है। इसे भाव नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग सूही विच रूपमान करदे ने। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजणहारा। इस शब्द का गायन किया भाई सतविंदर सिंह ते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी।

0: पगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सरजनहारा। इस शब्द का गायन किया भाई सतविंदर सिंह ते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेव्या, अंत लय छडाया। साहिब श्री गुरु रामदास जी भगतां अते परमात्मा दी उत्तम प्रीत दी महिमा बयान करदे हुए स्पष्ट करदे ने कि अपने प्यारे भगतां दी बौड़ी हर वेले परमात्मा आप तत्काल करदा है, मासा भी ढिल नहीं वरतदा। ए रीत जुगां जुगां तो निरंतर जारी है, भगतां ते प्रभु दी पूर्ण कृपा ही रही है। यही प्रभु दा बिरद है अते उसकी कुल संसार विच महिमा है। गुरबाणी विच ध्रुव प्रहलाद जिहे किन्ने ही भगतां दीआं गाथावां इस सच दी शादी भरदीआं ने कि जो प्रभु नूं चंगा लगदा उही ओह करदा है। इसे करके ओह सदैव भगत जना दे सहाई वजों जाणिआ जांदा है। सुणदिआं गुरप्रीत सिंह न्यामिया होरां पासों वार्ता, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिआ।
1: इस संसार दे विच विचरदिआं जिहड़े प्राणी अपने प्यारे गुरु की शरण विच जा पैंदे हन, अपने सतगुरु का पल्ला फड़ लैंदे हन, गुरु उन्हां दे हिरदे विच परमात्मा का नाम दृढ़ करवा दिंदा है। फिर वह प्राणी परमात्मा का नाम स्वास स्वास जपदा है ते हर वेले उसनू अपने अंग संग समझदा है। जिहड़े प्राणी नाम जपदे हन जां जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा का नाम दृढ़ हो गया उन्हां नू इह लाभ मिलदा है कि अजिहे प्राणियों की माया वाली भुख तरे सारी ही दूर हो जाती है। उन्हां नू इक लाभ होर भी हुंदा है कि जिहड़े प्राणी सदा परमात्मा का नाम सिमरदे रहिंदे हन आत्मक मौत उन्हां उत्ते अपना कोई भी प्रभाव नहीं पा सकती, आत्मिक मौत का जम उन्हां दे नेड़े भी नहीं ढुकदा। गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन कि जिस प्राणी उत्ते परमात्मा कृपा करता है वह ही सदा उसका नाम जपता रहिंदा है ते परमात्मा उसनू अपने नाम विच जोड़ के संसार समुद्र तों पार कर देंदा है। आसा राग विच गुरु रामदास जी का फरमान है, जिन्हां भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम त्यावै, जो हर हर नाम त्याएं दे तिन जम नेड़ ना आवै जन

नानक को हर कृपा कर नित जपै हर नाम तरावे। राग आसा विच ही गुरु रामदास जी फरमान करते हैं कि जिहड़े प्राणी गुरु के दसे रस्ते उत्ते तुरदे हन अते इस बरकत नाल उन्हां मनुखां दे हिरदे विच परमात्मा की प्रीत सदा लई पैदा हो जाती है। अजिहे प्राणियों नूं विकारां तों बचाउण की समर्था परमात्मा विच हुंदी है। जिन्हां अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। जिहड़े मनुखां नूं परमात्मा का नाम प्यारा लगन लग जाता है उन्हां विच किसी तरह का कोई भैड़ नहीं रह जाता। कोई मनुख उन्हां दी निंदा नहीं कर सकता क्योंकि उन्हां दे विच निंदन योग कुछ हुंदा ही नहीं। तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा। इस तरह की बिरती वाले भगत परमात्मा हरेक युग विच पैदा करता है। दिलचस्प गल यह भी है कि जदों अजिहे परमात्मा दे प्यारियां उत्ते किसी तरह की कोई भीड़ पैंदी है जां उन्हां दी इज्जत दा ते लग जाती है तां उन्हां दी इज्जत भी प्रभु आप ही रखता है। श्री गुरु रामदास जी महाराज इस संबंध विच वख-वख युगां दौरान होए प्रभु दे प्यारियां भगतां दा दृष्टांत दिंदे होए फरमाउंदे हन कि जिस तरह प्रहलाद प्रभु दा प्यारा भगत सी परंतु उसका जन्म एक बहुत ही राक्षस बुद्धि वाले पिता हरनाक्ष दे घर होया सी। हरनाक्ष ने प्रहलाद नूं प्रभु का नाम जपन करके बहुत ज़्यादा तसीहे दिते। उसनू इन्ना ज़्यादा तंग किया गया कि अखीर परमात्मा नूं अपने भगत की रक्षा करन लई संसारक रूप बना के आना ही पिया। वाहिगुरु ने हरनाक्ष नूं जानू मार दिता अते अपने भगत प्रहलाद नूं उस दे प्यो वल्लों दित्ते जांदे कष्टां तों सही सलामत बचा लिया। भगत नामदेव जी जिन्हां दा जन्म महाराष्ट्र विच होया सी उन्हां नूं भी लोकी नीवी जाति विच पैदा होण दा ताना मारिया करदे सन। एक बारी जदों उह अपने इष्ट दी पूजा करन लई मंदर विच गए तां उन्हां नूं कथित तौर ते नीवी जाति वाला व्यक्ति आख के उत्थों दे पुजारियां ने मंदर विचों बाहर कढ दिता। भगत नामदेव जी उदास हो गए ते मंदर दे पिछले पासे जाके बैठ गए अते अपने प्यारे प्रभु दी याद विच खो गए। भगत जी प्रभु नूं याद करदे रहे अते परमात्मा दे गुण गाउंदे रहे। अखीर जिस मंदर विचों भगत नामदेव जी नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया सी उस मंदर दा मूंह घूम के उस दिशा विच हो गया जिधर भगत नामदेव जी बैठे सन। अज भी इस मंदर दा मूंह उल्ट दिशा वल है। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हरनाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दियो मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लए चढ़ाया। परमात्मा वल्लों भगतां दियां सारियां मुश्किलां हल करन अते उन्हां नूं वडियाई बख्शन दियां अनेकां उदाहरणां इतिहास विच दर्ज हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंग 1165 उत्ते भगत नामदेव जी ने खुद बहुत बेहतरीन शब्दां विच इस प्रथाए बाणी दी रचना कीती है। दिल्ली दे बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक ने भगत नामदेव जी नूं अपने कोल बुला के कहा कि जिस भगवान दी तुसी पूजा करदे हो उह तुहाडे की कम कर सकदा है। काफ़ी मंदा चंगा भी बोलिया ते बादशाह ने कहा कि एक गां मर गई है अपने भगवान नूं कहो कि इस गां नूं जिंदा कर देवे। भगत जी ने कहा कि अजे किस तरह हो सकता है कोई मरिया हुआ प्राणी दोबारा किस तरह जिंदा हो सकता है। परंतु बादशाह अपने हठ उत्ते अड़ गया अते कहा कि तुहानू एक पहर दा समां दिता है जेकर तुसी गां नूं जिंदा ना कर सके तां तुहानू मार दिता जाएगा। इन्ने नूं बादशाह ने हुक्म कर दिता कि भगत नामदेव जी नूं हाथी अगे सुट दिता जाए। परंतु हाथी ने भगत नामदेव जी नूं मारन की थां अपनी सुंड नाल नमस्कार कीती। दूजे पासे भगत नामदेव जी नूं प्यार करन वाले वड्डी गिणती विच इकट्ठे हो के बादशाह कोल गए अते कहा कि जेकर तुसी भगत नामदेव जी नूं बख्श दिओ तां उन्हां दे भार दे बराबर सोना तोल के तुहानूं दे देंगे। इस दौरान एक चमत्कार होया कि गरुड़ दे खंभां दे फड़फड़ाउण दी आवाज़ आई। सारी दुनिया ने वेख्या कि भगवान विष्णु जी खुद अपने वाहन गरुड़ ते सवार हो के उत्थे पहुँच गए। भगवान विष्णु जी ने भगत नामदेव जी नूं पुछया कि दसो तुसी जे कहो तां धरती नूं पुट्ठी कर देवां जां इस बादशाह नूं कोई होर करड़ी सज़ा दे दें। भगत नामदेव जी ने कहा कि एक मूर्ख दे कारण सारी दुनिया नूं क्यों दुख देना है तुसी गां नूं ही जिंदा कर दिओ। भगत जी दे कहण ते मरी हुई गां नूं

प्रस्तुत सर्वन कार्य से रोजाना प्रोग्राम गुरबानी विचार मीडियम एफ 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम दे 6 बजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां बाद साडे दिल्ली केंद्र तो तुसी हिंदी विच समाचार सुनोगे।

तूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे पगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। इस शब्द गायन की तसी पाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करते ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को

0: गलत बताया है। एनबीसीआई ने कहा कि एमडीआर केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। एनबीसीआई ने कहा कि 2000 रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर एमडीआर शून्य है और इसलिए जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहूं तुहानू साढ़े दिन विच प्रसारित किए जाने वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स दी उन्हां दा प्रसारण समा दस दईए। शामी 6:30 इतने से सुनोगे प्रायोजित प्रोग्राम किसान वाणी। आज इस प्रोग्राम च सुनोगे सिलसिले एक सफल किसान बलविंदर सिंह, मौसम का हाल सुनाया जाएगा, खेती समाचार सुनवाए जाएंगे।

रात सवा नौ बजे सुनोगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट संडे दिल्ली केंद्र की पेशकश। रात साढ़े नौ बजे सुनोगे प्रोग्राम खेड संसार दे विच हॉकी प्लेयर मनमीत सिंह रैना की गई गलबात।

0: वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वल्लों नौजवानां नूं नशा मुक्त भारत मुहिम दे दूत वजों काम करन दी अपील। पंजाब भाजपा दियां नशा मुक्त पंजाब यात्रावां नूं मिल रिहा भरवां हुंगारा। वख-वख थावां ते लोकां वल्लों उसारू शमूलियत। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नकोदर के उस समय के सब पोस्ट मास्टर संजीव कुमार नू 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया। अमृतसर में गैर कानूनी हथियार तस्करी नैटवर्कों के 8 कारकुन 13 पिस्तौलों नाल गिरफ्तार। तो भारत ने एशियाई खेडों 2020 क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका 147 रनों नाल हरा के अपना पहला सोने का तमगा जितया। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने अज चंडीगढ़ सकत्तरेत विखे सेहत विभाग चंडीगढ़ प्रशासन वल्लों समाज भलाई विभाग दे सहयोग नाल कराए गए नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम दौरान नशा मुक्त चंडीगढ़ बनाउण दा सद्दा दित्ता। प्रशासक ने हिस्सा लैण वालिआं नूं नशा मुक्त भारत सहुं चुकाई अते उन्हां नूं नशिआं दी दुरवरतों दे नुकसान दे प्रभावां बारे जागरूकता फैलाउण दा सद्दा दित्ता। समागम नूं संबोधन करदिआं प्रशासक ने NSS कैडेट नशा मुक्त मित्र बनन अते स्कूलां ते कॉलेजां दे विद्यार्थियों नाल जुड़ के सेहतमंद अते उसारू जीवन जांच नूं उत्साहित करन लई कहा अते नौजवानां नूं मुहिम दे दूत वजों काम करन दी अपील कीती। उन्हां ने विद्यक संस्थावां अते भाईचारिआं विच सहायक माहौल बनाउण दी महत्ता ते जोर दिता जिथे नौजवान मार्गदर्शन अते सहायता प्राप्त कर सकण। उन्हां इह वी कहा कि नशिआं दी दुरवरतों विरुद्ध लड़ाई लई इक समुचे समाज दे दृष्टिकोण दी लोड़ है अते देश दे भविख दी रक्षा करन दी समूहक जिम्मेवारी है। उन्हां कहा कि नशिआं दी तस्करी विच शामिल लोकां नूं सख्त कार्रवाई दा सामना करना पवेगा, जदों कि नशे तों प्रभावित व्यक्तियां नूं समें सिर इलाज, मुड़ वसेबे, परिवारक सहायता ते अपनी जिंदगी दुबारा बनाउण दे मौके प्रदान करने चाहीदे ने। पंजाब भाजपा दियां नशा मुक्त पंजाब यात्रावां नूं भरवां हुंगारा मिल रिहा है। मोहाली विखे यात्रा दे पहुंचण ते लोक वड्डी

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3,000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55,000 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
0: जय हिंद किसान वीरो। किसान वाणी दा ये प्रोग्राम लेके असी हाजिर हाँ। उम्मीद करते हाँ कि साडे किसान वीर वधिया होणगे, फर्स्ट क्लास होणगे और चढ़दी कला विच अपनी फसली चक्कर नूं अपने फसलां नूं चंगी तरह देख रहे होणगे। हुण असी गल करते हाँ खेती संदेश नाल ते खेती संदेश विच गाजर दी गल करते हाँ, क्योंकि गाजर दा चंगा म्यार ठंडे मौसम विच पैंदा है। बीज दे उगण लई 7 तों लैके 24 डिग्री सैलसीयस तापमान दी लोड़ हुंदी है ते वध लई 18 तों 24 डिग्री सैलसीयस तापमान ढुकवां है। ते गाजर दे वधिया रंग लई 15-20 डिग्री सैलसीयस तापमान अनुकूल है। लंबियां मुलायम ते सोहणियां गाजरां लई डूंगी भुरभुरी ते चंगे निकास वाली मैर जमीन वधिया हुंदी है, जदकि गेती फसल लई रेतली 2 मिंट मिट्टी नूं तरजीह दित्ती जांदी है। और फसली चक्कर है गाजर दी गल कर रहे हां तां गाजर नूं बहु फसली प्रणालियां विच सफलतापूर्वक शामिल करके प्रति वर्ग खेतर ते समय तों वध उत्पादन ते आमदन प्राप्त कीती जा सकदी है। ते गाजर वाले ढुकवें फसली चक्कर ने आलू बीज, गाजर, मूली बीज, भिंडी, जिस विच की क्रमवार अक्टूबर, जनवरी, जनवरी, मई ते जून अक्टूबर दा समा हुंदा है। ते किसानां विच प्रचलित होर फसली चक्करां विच झोना, गाजर, कद्दू जाति दीआं फसलां, गाजर, प्याज, हरी खाद ते गाजर, गाजर दा बीज, हरी खाद भी शामिल ने। ते इन्हां फसली चक्करां विच फसलां दी काश्त दी मियाद क्रमवार झोने लई जून तों अक्टूबर, गाजर लई अक्टूबर तों फरवरी ते कद्दू जाति दीआं फसलां लई फरवरी तों जून, गाजर लई सितंबर तों जनवरी, प्याज लई जनवरी तों जून ते हरी खाद लई जून तों अगस्त ते गाजर लई सितंबर तों जनवरी, गाजर दे बीज उत्पादन लई जनवरी तों जून ते हरी खाद लई जून तों अगस्त हुंदी है। ते सुधरिया किस्मां दी गल करिए तां पंजाब संतरी इस किस्म दीआं गाजरां संतरी

0: कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ सुनते हां गुरदास मान दी आवाज़ विच एक गीत।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
2: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है। और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
3: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर

0: क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास, जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है, हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: सुरक्षा,
0: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलैटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलैटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं, और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं।
2: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी चाहे कहीं

0: मिले सरकार के इससे मिले कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया। तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
1: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
0: जी?
1: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन? जो ग्रामीण इलाके में है। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है। ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे, उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा। तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है, और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिस पे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं, वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
0: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में

0: कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक डीबीटी के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,019 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियल्टी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया और आप जब 60 वर्ष की उम्र

में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किससे

0: 25 साल जो जनसेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
1: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है, तो 5 लाख तक उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान लें 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा, कोई पेमेंट, कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
0: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर

0: सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को, खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
1: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
2: लिमिटेड।
1: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम्स अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से अपनी योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
0: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
2: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेटरल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आई नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा, और तभी ये पहली भाग सेकंड भाग थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक

0: यानी एक एक तरह से एक सुविधा होगी 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज कर सकते।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल होने के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए, आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा, उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112, या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन करें
2: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
4: धन्यवाद, धन्यवाद,
3: नमस्कार।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 6th संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
7: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ

जी लव यू जिंदगी ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक सबक भी है कि हर हाल च जिंदगी दे प्रति नज़रिया हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखना है। हालात कदे खराब हो सकते हैं पर उन खराब हालातों नू ठीक करने की कोशिश कदे भी ना कामयाबी का चेहरा नहीं देखन लगती। सो लगे रहो डटे रहो ते हमेशा लव योर जिंदगी।

0: से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स से ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।

दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत ही अनमोल है। हर दिन खुश हो के जियो तो दूसरे नूं भी खुश रहन दिओ। इसे उम्मीद दे नाल कल दा दिन चढ़ेगा कि तुसी नवीं दिनां दी तरह कल दे दिन नूं भी अपनी जिंदगी नूं इंजॉय करोगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडु ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

0: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
4: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में

0: शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
1: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल GEM जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
2: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार अपने पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
0: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में

0: और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होटल के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पण क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला

0: क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा, आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
1: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हरा कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
0: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
1: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हेवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं, बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
0: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादुमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout

0: by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की. भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशू में. वुशू चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं. भारत की रोशमीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था. 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है. हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी. इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी. हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली. वुशू में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है. उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी. हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई. फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है.
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ. सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए. इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यू को स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यू को स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ. सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो. चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली. अलीशा ने 1 यू को स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और 1 इपॉन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए. अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ. इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंशु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा.
0: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला. क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है. डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल.
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स. द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.

0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, there North Korea came in their way.
1: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinnepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
1: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, देयर बाय कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
0: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
0: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। द इंडियन मेन्स 4x100 मीटर मेडली रिले टीम कंप्राइज ऑफ उत्कर्ष पाटिल, दानु सुरेश, बेनेडिक्ट बेनिस्टन एंड आकाश माने। The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India, and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रहीं।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड 4th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parthmane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening

0: series and missed out on a podium finish. And as usual, as we've seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के DNS रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭਵਤਾਰਿਣੀ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है।

0: उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, heads of states and union territories in New Delhi today, Mr. Shah said the government has prepared a road

अगर तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते सानू कॉल करो 0181 2813074 और मैसेज वास्ते 94 655 36077।

0: प्रोग्राम चलिया जी सौगात ते मैं थोड़ा आरज दोस्त अमित एक बार फिर तो थोड़ी सेवा में हाजिर आप हूँ सारे इंजॉय कर रहे थे बलकार सिद्धू का गाया हुआ गीत डोरिया जिसकी फरमाइश सानू राजू जी ने चंडीगढ़ तो की सी तो प्रोग्राम हूँ जारी रखते हुए गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल देखते हैं जी कौन ने कि शहर तो है और कि गीत की फरमाइश लैके हाजिर हुए ने हैलो
1: हैलो
0: की हाल चाल है जी कौन बोल रहे ने कि जगह तो बहुत बहुत स्वागत है मनजीत कौर जी तुसी दिल्ली वाले हो तुहाडा कहिंदे दिल्ली दिल वालियां दी हुंदी है ना जी
1: दिल्ली
0: दिल वालियां दी ठीक है ते अज दिन किस तरह दा बीतिया वधिया के आम जिहा के बहुत माड़ा किस तरह दा
1: जी वधिया ही बीतिया
0: चलो शुक्र करना चाहिदा परमात्मा जिस हाल च रखे है ना जी
1: अज मेरा पुत्तर भी आया सी अज मेरी धी भी आई सी
0: क्या बात है कोई खास गल के वैसे गेड़ा मारन आए ने
1: सारे रोटी पानी खा के गए

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? किस शहर तो?
1: मैं जिला गुरदासपुर जी, विलेज नवीपुर कॉलोनी नीटा, मेंबर पंचायत जी।
0: वाह जी, स्वागत है सर थोड़ा प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल है?
1: थैंक यू सर, बढ़िया। जल्दी करा नानक साहब जी।
0: मैनू याद आ रहा तुहाडे नाल मेरी बहुत पहला गल हुई सी, तुसीं विचों कॉल लगाना बंद कर दिया, काफ़ी वक्फा पै गया, काफ़ी देर बाद इतनी गलबात हो रही है।
1: एक महीना हो जी, एक महीना मैंने फोन नहीं
0: हाँ,
1: किया।
0: तो प्रोग्राम सुनते रहे हो विचों के सिर्फ कॉल नहीं कर पाए, कि या कॉल भी नहीं की, प्रोग्राम भी नहीं सुने?
1: सर मैं करता ही था रेडियो प्रोजेक्ट गलत आ गया ना, तो ये करके पहला ही 70 72 73 74 होने।
0: जिहड़ा 2342-171 वाला नंबर है वह तकनीकी खराबी कारण नहीं चल रहा। आपां नवीं लाइन दे उत्ते गलबात कर रहे हैं जी, जिहदा नंबर है 2813-074।
1: हाँ हाँ वो भी लाया जी।
0: ठीक है, तो अज किहड़ा गीत सुनवाओगे जी? पानी नहीं चला। ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडी पसंद का गीत तुहाडे तक पहुँच रहा है जी, तो असं उम्मीद करते हैं कि सानूं तुसीं रैगूलर कॉल करते रहा करोगे, मैसेज भेजते रहा करोगे। कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अगले गीत की फरमाइश सानू भेजिए जी जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा, विलिस डिकोस्टा। एक कहते हैं जी सानू रोशन प्रिंस का कोई भी पंजाबी गीत सुनवा दो। मैसेज भेजने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ी पसंद का गीत तक पहुँच रहा है।

0: अस्तपुरा जिला माऊ तो सानू मैसेज भेजने ने मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मुहम्मद सादिक अंसारी, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। अजीत नगर मलोट पंजाब तो सानू मैसेज भेज रहे ने छिंदर सिंह, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर थे, उन्होंने लाडली पोती रौनकदीप कौर, यह सुनना चाहते ने जी। कुलदीप मानक ते युद्धवीर मानक ने गाया हुआ एक युगल गीत, लो जी तुहाडी पसंद दा गीत तक पहुंच रहा जी।
1: दोस्तों, मैं कुलदीप मानक ते मेरा बेटा युद्धवीर मानक, असी दोनों ने अमन है दिखातर एक गाना गाया। एक गीत जड़ा है, एक गीत है अपने बगानियां दा, ओदों पता लगदा इथों।

अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू पीजी ने पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह पलवी शाह प्रमुख शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभी शाह अश्विनी शाह तो बहुत सारे साथी यह सुनना चाहते ने गुरदास मान का कोई पंजाबी गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजने लिए। नज़दीक बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा यह सुनना चाहते ने गुरनाम भुलर का कोई भी पंजाबी गीत। लो जी प्रोग्राम की अगली पेशकश गुरदास मान ते साथियों की आवाज़ तक पहुँच रही है जी। प्रोग्राम चल रहा है सौगात। अगर तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो अपनी पसंद का पंजाबी गीत सुनना चाहते हो सानू कॉल करो जी 0181 28 13 074। और अगर तुसी अपना स्नेहा अपना मैसेज गीत की फरमाइश वट्सएप राही भेजना चाहते हो साडा नंबर नोट करो जी 94655 36077।

अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू मिलिया जी सरहंदी बाजार पटियाला तो पेजरी ने प्रेम कुमार मार रहे जा इनका नाल ने चौधरी जरनैल सिंह यह कहते हैं जी प्यार पाना सौखा है निभाना औखा। बिल्कुल जी तुसी बहुत प्यारी गल बिल्कुल सही गल लिख के भेजी जी। आओ फिर सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश अगला गीत।

थिया संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम जोत परमेसर सिमरत पाई है मान। सरवण करदे हां भाई दिलबाग सिंह ते भाई गुलबाग सिंह होरां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द है।

कथी है संत संग प्रज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेसर सिमरत पाई है मान। इस शब्द गायन की तसी पाई दिलबाग सिंह ते पाई गुलबाग सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया। इस महावाक मुताबक करते क्या बाता गुरु के मीत अर्थात संत जना पास जाके ही सरवण करनु मिलदिया ने। बिलावल राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सत संगत दी महिमा बयान करदे ने कि प्रभु की बात करते क्या बाता सिर्फ सत पुरशां दी संगत विच ही सुनन नु मिलदिया ने, जिथे दिने रात लगातार प्रभु दी सिफत सलाह गुण गायन कथा विचार दियां तुना गूंजदियां ने, ते आत्मिक आनंद दे हुलारियां दी रौं चलदी रहिंदी है। क्योंकि प्रभु किरपा करके अपनी अमुली नाम दी दात जीव नू बख्शदा है, ते वडभागा जीव अठे पैर प्रभु दे गुण गायन करदा होया अपने तन नू विकारां तों मुक्त कर लैंदा है। संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिनस अर रात। इस शब्द का गायन किया भाई राज बिरेंद्र सिंह होरां ने। संत

0: संतन के सुनियत प्रभ की बात। आप जी सरवण कर रहे सो भाई राज बीरेंद्र सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखविंदर सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सरताज पाणे विच रहण वाले पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग बिलावल अंदर उच्चारण कीता होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 820 उत्ते सुभाए मान है। इस पावन पवित्र शब्द दा समुच्चा भाव सतगुरु जी ने रहाओ दियां पंगतियां विच बख्शिश कीता है। बचन हन संतन कै सुनियत प्रभ की बात। सत संगत विच आके प्रभु परमेश्वर दी सिफत सलाह सुनी जा सकती है। कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिन सियर रात रहाओ। सत संगत विच दिन अते रात हर वेले प्रभु जी दियां कथा कहानियां कीर्तन हुंदा है। जिस विचों आत्मिक आनंद खेड़े दी एक धुन पैदा हुंदी है। संगत दी बहुत वड्डी महत्ता मनुखी जीवन विच है। संगत दा प्रभाव बहुत वड्डा है। आम कहावत भी है जैसी संगत वैसी रंगत। भाई साहिब भाई गुरदास जी ने भी जदों चंगी अते मंदी संगत दा जिक्र कीता तां उन्हां ने भी अपने 549 नंबर कवित विच दर्ज कीता। फरमान है काहू दशा के पवन गवन कै बरखा है। काहू दशा कै पवन बादर बेलात है। किसी दिशा दी हवा चलण नाल वर्खा पै जांदी है अते किसी दिशा दी हवा चलण नाल बदल उड़ जांदे हन। मीह बंद हो जांदा है। काहू जल पान किए रहत अरोग देही। काहू जल पान व्यापै बिरथा बिललात है। किसी जल नूं पीण दे नाल रोग दूर हुंदा है शरीर अरोगी हो जांदा है अते किसी जल नूं पीण नाल शरीर रोगी हो जांदा है। जीव करलौंदा है रोंदा है। काहू ग्रह की अगन पाक साक सिद्ध करै। काहू ग्रह की अगन भवन जरात है। रसोई विच बलदी अग भोजन आदि तैयार करदी है पर अग ही है किसी घर जंगल आदि नूं साड़ भी देंदी है। उसे तरह भाई गुरदास जी संगत की सोभा का जिक्र करते हैं। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए। काहू की संगत मिल जमपुर जात है। किसे साध संत रब्बी प्यार विच भिजे दी संगत विच कोई मिल जाए तां जीवन मुक्त हो जाईदा है अते किसे माड़ी मत बुद्ध वाले पुरश दी संगत विच बैठिया जीवन खुआर हो जाईदा है। इसलिए सतगुरु जी बचन कर रहे हन भाई सत संगत विच आके प्रभु दी सिफत सलाह कीतियां जीवन परम पद तक पहुँच जाता है। गुरु अर्जन देव जी अंग 10 उत्ते फरमान करते हैं। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। सतगुरु जी शब्द विच अगे बचन कर रहे हैं। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। जेड़े संत जन संगत विच आउंदे हन प्रभु दी मेहर हो जांदी है। प्रभु उन्हां नूं अपने सेवक बना लैंदा है। ऐसे रब्बी प्रीत विच भिजे सेवकां नूं प्रभु अपनी सब तों उत्तम दात श्रेष्ठ दात नाम दी दात बख्श दे।

पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हेऊं अरापाऊं देहो संदेसा। इस शब्द गायन की तसी पाई मोहिंदरजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: दुख दारू सुख रोग भया जास ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाऊं करी न हो। बलहारी कुदत वस्या तेरा अंतना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कला पर पूर रहा। तू सच्चा साहिब से सवालियो जिनकी ती सो बार पया। कहो नानक करते क्या बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने।

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन वंश जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अल्लाह।

नाम परमताम शुद्ध बुद्ध निर्विकार बेसमार सर्वर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाक सरयो नख विदार जियो। संख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा।

0: का बड़ा तमाशा, गुरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तुल जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत दे मीठे जाके बचना।

0: माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़ मेल तुमासा वाह गुरु तेरी सब रचना।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव बिरंच धर ध्यान निधय जिस बेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गणन समाथ तरन तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बसै।
2: गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध समत समारिन को हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज त्र

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथायत बड सुपर सदा सब विद्रत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर।

बनता सुत देह ग्रेह संपत सुखदाये इन मैं काछ नाहे तेरो काल अवध आए अजामल गाज गन का

वाहे गुरु जी की फतेह, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की।